0: सबैको रेडियो सामुदायिक रेडियो रोल्पा 93.8 MHz।
1: स्टुडियो टाइम
2: अहिले दिउँसोको 3 बज्यो।